0: सरकारी तथा बोर्डिंग स्कूल कैंपस का ड्रेस सुपथ मूल्य में तैयार गरिन्छ।
1: प्रोपाइटर रमेश परियार, संपर्क मोबाइल नंबर
0: 9860248543।
1: स्थान धादिंग बेसी सुगम टोल, मुक्तिनाथ बैंक को ठीक अगाड़ी।

0: नयाँ नेपालको नयाँ रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 MHz 97.6 MHz
2: नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा।

लस हे मेबे फेबेमा रङमाझे आरसीसी दिम गोरा चहारादिङ पे रखोरमा नगफारममा असिम टमाटार की टनेलमा सिङबे सुर सिङजेपल मुबा होले सिङबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी टिम फिटिङ सिङबे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यङबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रङ्युर्नाले बजार कोर्ब आहि नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 010-520-470 असेम 98511-87-882 फोन सिङजिम सेगो है रोमा।

धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेक है रोमा।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: लस्सो है मेहबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम बोरा चहरा दिन प्ले रखोर मा नगा फारम मा असिम टमाटर की ट्रनेल मा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन न बोरबारी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 02-525-470 असेम 98-511-87-882 फोन सिंजिम सेगो है रोमा